मेगाहर्ट्ज आमगा हम दस मिनट आधे संदूक चली बा आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल दे दोना मखल मथेल थरुम सिंह ताबिरी संगाई चैनल दे हो जी लांथोक चली सीधे हिदाक

0: हेलो
1: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा मने तुम बुतराम नोक चरी
0: हो
1: मान आ गुड आफ्टरनून यम
0: नोगाई जरी होय कना होय पिरबनो आई तेरा सपन देखते की नमाई देवी
1: नमाई थेम
0: बिधु
1: बिधु
0: होय नक्ति की लीला तो यम नुमाई जब अजूब नहान दिन तुम तरुक का तारीकुं थागी तुम तरुक का मिनी तरादो अभी दला का कोई तरुक की होगा रिते की एक चलागी मतंग मतंग आइडर का दूधी दो अमुक हन्ना तारी तांगदा करी नमिता लाक देखी है बदो अदु अदु याम ना ताजन निबा अदु मक्का ले रहे हैं देखी तो ये तो वो उनका जेगी वारी को ताबी बा
1: ताजे ये है वियो फंडो पियो
0: ओ तो वो उनका जेगी हमें दूलाई बना
1: माइक होय होय
0: तो वो उनका जेगी अनाव कांगों की देश है तो ये अबे ये तो कांगे दुबी सांग वापस अबे ये कांगू दुबी करी चलागी तब तो कोई कांगों दब दिन दो आ बता कोई भी याम नुमाई जब आए शायद भाग जब दो अबे ये कोई जो अन्यां कोई नहीं द थाना बसे हम पाम जरा पा अदुना थाना बस पाम जरे अभी मतलब जो कोई नपी की थोड़ा उधर फिर इन पापों का इसे इन सब
1: का
0: अभी लीला खाना वा ब्रह्मा को मनोरो सिने सिंबल सिंदो कोई तुम यावजन वही हमारे अदम काम जबा अभी करी करी नो मायां लिया डाली थे जामन के ना
1: खोंजेल से ताजाबदा इमा कौजगद्रा सही क्या सुबिरगी इसागी हेलो हेलो हाँ जी हो खोंजेल से
0: ताजाबदा
1: अदो इमा इमाना अखुगी आकाशवाणी फालगी कोइना संदोकचरी बथोरम सिंगसे यामना मपुंग फाना ताबिरगा अखुइना इमाना ताबिनिंग बथोरम मयामा मसु हुजिक हाइबिग्रे संदोकचरी बथोरम सिंगसे नुङाइना ताजरी हेदनासु हाइबिरे सीताजा बदसु अखुगी आकाशवाणी इम्फालना खुगी ताबिरी बसिंगी दमकता संदोकचरी बथोरम सिंगसे अखुइ वान होना जदना संदोकचरी बसिंगसे खुइ नुङाइना ताबिरम बसि खंगजाबदा सुके मते दुङाइजे आवाबम पुनमक अखुइ कोक्से अखुगी लिसनर सिंगसिना थवा यांगना ताबिद्रगा दे खुइना संदोकचरी बथोरम सिंगसे खुइ मपुंग फारोय दोरिबनि होय पाकुम तौजरीब थोरम से सीधा सिथि थाबिरकनबगी दमकता सुनिंग सिंगजरी
0: ओ ओ होय होय होय होय
1: तौजरा दिगे इमा अना एक दियाउबी देखो
0: इमा अना एक दी थेजो कोराई यांगते दिए बा दुवा खोजि यंगदी यंगथा यंगदी यंगथा बा दी मवोंगते तरा ताहौदा बा
1: खोजि
0: थाबने बा
1: होय
0: अदो बुखि जे थाबनिना कोजि बुखि जेकि एकदम सिंग सिंगकि आपौरा बा ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯦꯟ ꯇꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯇꯤꯟ ꯂꯨꯠ ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯉꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯥꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏ ꯑꯍꯟꯅꯤꯅꯀꯣ 이마 지금 다 생각하고 갖고.
1: 허이. 아도 보이마.
0: 허. 게레이 사이도 티비 암루이잖아.
1: 허이 마네 염레 게레 해버시 타이네기 파이푸나 담비람바 파자라바 레마말레 제리바니 소이베야다바 소이파드라바.
0: 마니. 아도나 자기 이사도 담비미타다바 거기고. 농아이티에도 담바도 공도 우고도 하다디. 그집팅기 맞아보다 우지리팅기 맞아보다디. 도키마티
1: Thank you,
0: Madam. Thank you.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: मैदान जी गटन फोन
0: गुड आफ्टरनून।
1: दवाई भाई खाइम सना मचा कू जम दी
0: खैदेम सना मचा
1: हाँ
0: भाई, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़म दा तराम नोक्सरी करी करो ब वाफम सिंग फोंग दोक पिनिंग बगे नि पियो बे सिंग गमरी लेने वाफम सिंग फोंग दोक पियो।
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯥꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯝ ꯌꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ
0: ꯑꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯗꯣ
0: ꯑꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯖꯤ ꯂꯝꯇꯥꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯐꯥꯟ ꯅꯤꯡ
1: ꯐꯥꯟꯅ
0: ꯑꯥ
1: ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯏꯁꯩ ꯁꯟꯕꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯗꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒ ꯁꯟꯕꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯈꯟꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯪꯂꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯪꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯏꯁꯩꯒ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅꯒ ꯆꯪꯉꯒ ꯏꯁꯩꯒ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯆꯠꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝꯗꯁꯨ ꯌꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯌꯥꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯌꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯦ ꯉꯥꯅꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦꯗꯅꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯅꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯃꯄꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒ ꯊꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯐꯥꯖꯟꯗꯕꯒꯤꯀꯣ
1: ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯥꯅꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯗꯅ
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯃꯨꯛ ꯎꯅꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ
0: ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो
1: गुड आफ्टरनून मात्र ऐसे
0: माने गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा हमने मिंगले फोंगो मुंतंग हाना फोंडो पियो ताबी ब्रा मिंगले फोंगो मुंतंग हाना फोंडो पियो दुगा सोमना फोंडो पिनिंग बवा फोंडो मखाता ना दुमक तामिने से ming amukta khangje ge wari chaba nu ngai na ba kana wi bira banu
1: ai so go ni ga
0: hello
1: thang le di ne so ni ga
0: choibam
1: indira
0: indira bi bani ko
1: oi ai ya phang du khang e
0: oi mong sang ge de gi oi phong dok bi yo
1: na te dai nem ge man yu hai ge ni ko ai ni ti ni da ka mi ne na ko
0: o o o
1: अदो
0: अमत लास्ट है बा अदो इशागी लोबिरी बखुई से पूरा का बेटे नरीदा सत पीर गई था कापी बदी
1: कते होई ही आई जी ने बताव नहीं बको अदो ना माई दो मासे अच्छे है बको अभी लावे तो अमों में से
0: होई होई इशागी लोबिरी बखुई से बेटे नरी अनक पा मफम जाबा मदा खुदों जागदा बसोम न सत पदा दु मम फम मद अमद से लगा कोई के तो विनिंग ट्रीटमेंट पुनमक तो वी हब फम से थम जगे कॉल तो बिरो पिक दम तक थाकर पोंग डॉक चेरी

धन्यवाद रंजना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं आज शनिवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही रूप। तो ये पहला गीत सुनिए और आप अनुमान लगाइए कि आज का एक ही रूप कार्यक्रम किस गायिका पर आधारित हो सकती है।

जी हाँ श्रोताओं, आपने सही अनुमान लगाया है। आज का एक हिरूप कार्यक्रम आधारित है गायिका साधना सरगम पर। अभी आपने सुना कुछ ना कहो फिल्म से साधना सरगम और शान के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लोई ने।

अभी आपने सुना क्यों हो गया ना फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सवारा है एहसान नूरानी ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जो जीता वही सिकंदर फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना मजरूर सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने। आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम एक ही रूप, जिसके अंतर्गत आप सुन पा रहे हैं गायिका साधना सरगम के गाने।

अभी आप सुन रहे थे जुर्म फिल्म से साधना सरगम और कुमार सानू के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार है इंदिवर और संगीतकार है राजेश रोशन। आइए अब सुना जाए मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है खुदगर्ज। बोल फारूक के हैं और संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगला चैनल में। तो मेरा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: सही क्या मुसुबीर है
1: आई शासी चौरांगना सही हम फू हम दो एक बस उजरे
0: लाइक ऐसो की मतांग दा नजर करी कुम्भ हिरम मब द सीजन न बस ये सांग ता न बसे मुसी दी कदाई दिस ली कमाई तो हुए
1: मशी मतांग सी एक होने मरुए ना अवांग शक्माई एसटीसी ऑफिस दा लोरुंग संग्सी दा एक होगी ताना भी आप ये सांग डॉक्यूमेंट सिंग मखोई देगी दम रिफर तोरगा नम फेलोम देगी तोरगा दम लोकथन
0: खुंगंग से अखोइने संगसिन जरा पम तम दलम बी थोंग सिदी खरा दिदम मक नोआइ तरब्रा हैन खनजे मसे अखोइने यौन संगसिन दबगे ओरम बसुयै हौजि खुंगंग सिगि ओइना लैरि बलम बी थोंग गि फेबम से कमाय यंग बे
1: अखोइ गि लम बी थोंग से असुकि मति नोआइ त्रे हाइबेदा हाइमेन म थोलरोय असुकि मति नोआइ त्रे मियाम नसु थोदो हेदो न खंबिरि बिदुगाय अखोइ गि चन नब हौजि हौजि चन रि बलम बी सि कोम गे कोम गा त गाय रे अदुना मसे यारखनि अथुब मतमद सरकार दि मियेंग सिंसिनजरि
0: अदो खुंगंगसी थकना सानब अफवा तोति सिंगुम बफंग बलै ब्र कमाइ तमे
1: तोति सिंग जे खोइना खुंगंगी आलमन खरन सिंदना थकना बे सिंगने हायदना मयान पिबिरि अदु मोइने पिरि बे सिंग दु थजोला फत बे नते अदु मदु मना इन बोय बे नते खै खरम खे दु वसे हाजिरि
0: खुंगंगसी गि चावराक पे युम थोंग अदुगा चावराक पे मिसिंग सिदि क्यामुक लै कमाइ तमे
1: चावराक पे युम थोंग सि 100 कम बोय अदुगा मिसिंग सिना सरोकपा चोंगा की कितंग मथक वयगरा अदुबाय लेजे
0: मरुवैना अखोइन हंगजेनिंग बसि खुंगंगसिगी खुंजासिंगसि अनाय गम थौलक पमतमदा करमबो हॉस्पिटल लचली ख्वाइदिगि नकपो हॉस्पिटल सि कदाइदि लै मरुवैना इम्फाल सलगि येंगब्रा कमाइ तवै मसि मतांग कितंग थंबियो
1: अखोइगि आवाना तारक पमतांग हाइजे बतारे सि मतांग सिदना अनाय यारोपदिदि खोइगि यामना नकपदा अवांग शेंगमाई द लेबिरिबा डिस्पेंसरी हाइगद्रा मसिदा आयाम बतौने अदुगा खदा खदिंग सखलागा क्वेरेंगे सिदा अमुक तौई अदुगा खरे हेन लापधारंग ने इम्फाल रिम्स कुंबा करिगुंबा जेनुस कुंबा दम लेहरे प्राइवेट हॉस्पिटल मे आम लेहरे सिदा दम तौनो बसु यौई
0: खुंगंग सिगी ओइना लाइक लेशुगी मतांगदा महितम फम मरुइने स्कूल से अनकपदा करी करी स्कूल सिंग ले मसि अदमक इम्फाल ताना चलगा तमब्रा मसि मतांग दसु खितंग थंबि
1: लमदम सिगी ओइना माई मसिंग तमलेबांगांग पिकपदेगी ग्रेजुएशन तब भावी थाक लेजरी अयामना खोई स्कूल से स्वाद मतिक चाब लेते इंग्लिश स्कूल से अवांग पसम खुनौदे खरा हौरे अवांग पसम खुनौदा लई स्कूल हैबमने नॉर्दर्न एकेडमी हैबमने अनि लेरे सिदे खर तंबे अब तंबे अरे कोरेंगई औरगा किंग्स स्कूल हैबम मा मयामम लेरे अदिगी खरे हेना चखलगा खोई सगाफम दाइद तंबे यावरे अदिगे तेते सुमाय तौदना आंग मई मसिंग तौई अदुगा ग्रेजुएशन दी खोई सिदे खुदोंसाब लेतबनिना पिकना पाराबद नकना पाराबद खोई लिबरेट कॉलेज की अम लेबसे मसिसिदा खोई ग्रेजुएशन से तुम तौनी अरे ये खरे हेना सथरगन दियों कॉलेज इम्फाल कॉलेज अम मादुम तौना रे
0: याम नुवाई जाय पाबुंग खोई खंगजेनिंग से खुंगंगसी मतो करमना तिंगरी हाइने थोनकी मसि मतांग द खंगबिरग द खितंग थंबियो
1: आइना खंगजबदा आइना हाइबदि वर्कदबा यामना नुक्सीबा पोवारी येदुंबा पाइपुन थंबिरंबा नुक्सीख्रबा लमदमसी मखोइन तिंगरी हैन थोनबिरिसे अखोइ मसिगी चपचाबदि आइन खंगजा हुदे यदु आइन सुम यामना नुवाइजबा वखलोन लमखति ताजेखि खोइ अहलमन सिंगना लामना यामना समन लेजबा खुंगंगामोइना सिदा तारसि खुंदारसि हाइद्रा लेमनेगि बाल सिंगि मोटा आइन हाइफे ताजा हुबदा आंगा वइनि ताजा हुब मतमदा तमाइना ताजरे ए अजना तमाइन तोरग नुक्सीन थोनखिबा मिंगनि हाइ
0: मखा तारकबद पाबुंग अखोइनि खंगजेनिंग बसि खुंगंगसि करमबा लाइरेमबा लाइरेमिने कोली लाइ हरावबुगि मतमसिना करी थाद नुमित क्यानि फांगथोइ मसि मतांग द खितंग थमियो
1: रेकाय सिबु कोनबिरबा इसोरसि इबिदो अवांग कौब्रु असुप्पा नोंथा लाइरेन आहानबा हायना यामना अमायबा माइबिनि सिं सक्षय सैसक पिरि इबिदो कौब्रुगि मसाय कोनदने अखोइनि गासि लैजेरि सि समायना ताकपिरि अदुगा मसिगि हरावबुगि हराव सक्षेल तंबा थौदोकमै सानाबगि मतमजिना कालेन हायब थासे मसिदा खै तौनै
0: मौसाना नमित क्यानि फांथुइ मसिमदांग थंबि
1: सुमे सुमे मौसाना नमित से हप्तामा पांथोकपा ngalingai matam de di thama ari jik sakholak pa pasanu sa sang pagi matungi na hptama sumain tawi mi mangani tare ni sumana haror ga dum lakche bani
0: yam nuwai je lainga ki maikai de gi kari kari thabak thoram sing paihat haning magi apama lai masimatang de kitang takpiyo
1: lainga ki maikai de gi di asuki mati yengchen han ba pami yengchen haninge ai khoi gi tawri se awat pa awat pa ngatanga re ajuna khungang sida yari gi apaba pokta kaya gomeni saite gi lainga ki maikai de gi sumana tawbir gi di yam nuwai ga ne khanje
2: khunayam saukhat pa haibasi lamdam adu da lairi ba khunja sing lairik lai shu haiyan ba khak natana mai ising ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯊꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯣꯜꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯔꯤꯕꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯋꯥꯏꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯔꯣꯅꯤꯕꯂꯥ,
3: ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯦ ꯏꯆꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ꯫
4: ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ, ꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ
3: ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯏꯊꯟꯗꯅ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯅꯦꯕ? ꯏꯆꯦꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔꯕꯒꯦ? ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
4: ꯀꯨꯏꯔꯦ, ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 17ꯗ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ, ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯑꯗꯥꯏꯗ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯞ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ
3: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ 17ꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 26 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ
4: ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯖꯔꯤ꯫
3: ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯦꯅ 2017ꯗꯒꯤꯅ 26 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
4: ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯁꯣꯊꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯊꯕꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯔꯒꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ, ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯦꯀꯣ, ꯂꯧ ꯎꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯗꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯄꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯜꯂꯦꯕ,
3: ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ
4: ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ, ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯀꯪ ꯊꯥꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯍꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧ ꯎꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯦꯕ, ꯈꯔ ꯀꯪꯉꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ꯫
3: ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯂꯝꯈꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ,
4: ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯩ, ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯁꯦꯝꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ, ꯀꯔꯥꯏꯅꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯏ, ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥꯅꯤꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯕꯔ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ,
3: ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦꯕ,
4: ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯊꯥꯡꯀꯠꯆꯩꯀꯣ, ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥ ꯑꯣꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯦ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ, ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯆꯠꯄꯗ, ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ
3: ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯏꯆꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
4: ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ
3: ꯍꯣꯏ
4: ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ, ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯇꯧꯋꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯐꯪꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ,
3: ꯎꯖꯥꯂꯥ
4: ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ 27 ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯦ, ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ
3: ꯍꯥꯏꯗꯤ
4: ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩ
3: ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯏꯆꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
4: ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ 27 ꯃꯨꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩꯌꯦꯕꯀꯣ, 2022 ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯁꯥꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯁ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯁ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯨꯝ ཁུང་གང་
5: ཨ་མ་ ཅ་ཁ་ཏ་པ་དེ་ ན་ཧ་ སིང་གི་ ཐོག་དང་ ཨ་སུ་ཀི་ མ་ཏིག་ ཅ་ཝི་ ཧི་རམ་ ཁུ་དིང་ དེ་ སར་ུག་ ཡ་བ་ཏ་ ན་ཏན་ ཏུང་གི་ ཡུམ་བི་ ཨོ་ཡར་ཀ་དོ་རི་བ་ ན་ཧ་ ཀ་ཡ་ ཨ་མ་བུ་སུ་ ཨ་ཅུམ་བ་ ལམ་བི་དེ་ པུ་ནན་བ་ ཀན་ན་ ཧོ་ནརི་བ་ ཏིང་གྲི་ ཡུ་ ཌེ་བལ་མེན་ ཨ་སོ་སི་ཡེཤན་གི་ ཇེནརལ་ སེཀ་རེཏ་རི་ ཕུ་ཀ་རམ་བམ་ ཨིམོ་ ཅིང་དེན་བན་ ཐམ་བི་རག་པ་ ཝ་ཕམ་ སིང་ ཏ་མི་ནསི་
6: ai isama program am imo single mak tingri impal west labor itine bako tingri hairi bako kungang sidegi neba tingri gi taida hairi ba club asigi secretary oina phambu jaba
7: yam noise how do in the from the pavir ba phang gi matang de su yam marik chumna thambi kre lamda masigi oina huji ki chakka thorang gi oina kari karam ba phibam da habri lambi thong da bo erga su mising mising gi erba su koi pham sidai da kari phibam da leiden lobi be haji se
6: hauji ki oina di hoi ising budi kitang budi safari haina lobi ya bako haidi hana leiram da bodo huji kodi to tiji kitang ta ba de gi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: lambda masigi oina toti singje phangdi phange ba ko adubu mayam ga manana haibdi atopan lam singda lairiba toti kainoji ga akhoi da lairiba siga di facility kainoji kitangni kheti khenar ne ba haibdi mayam da piriba moi gi di singje wata bi da lairaga pi doine ba akhoi songgi di toti se nong suraktra ga di loigi ni haibase si simadi adum loigi ba yana lairine ba asi nong suraktra ga di singje adum akhoi jodum wa dora ba ne ba
7: yam noi je lamdam asigi oina club asigi secretary gi from chu pubiri bani na lamdam asigi da muta sakhat rangi oina kari kari thabak sing di hoji phawgi lakat dikhi ba le
6: thabak ti taida club gi oina di yam pai khat le ko akhoi na sem ja ba se angang mayam gi oira su adegi khungang sigi oira su akhoi na lambi se adegi khungang gi lambi se sangai ba akhoi na u kai ka mayam tawri ma mayam sum sam na ha ba u sar thari ba adegi angang sem ka li ba lamba ki akhoi ba mai thana mayam se akhoi ayam na loi tok je club gi oina di
7: yam noi je makha tar koi na khangjening ba se koi tung tarak pa da ལམ་དམ་སི་གི་ ཨོйна ཀരി ཀരി ཚ་ཁ་ཏ ཏོ་རང་གི་ ཐབ་ཁ་སིང་དེ ཕ་ཁ་ཏ པི་གི་ ཧ་བ་གི་ ཝ་ཁལ་ད ལེབི་རི་
6: ཕ་ཁ་ཏ་ནིང་བ་དི་ མ་ཡམ་ ལེ་ཡ་ ཨ་དུ་བོ ལམ་ཅོག་ཅབ་གི་ ཝ་ནི་བ་ཀོ ཨ་ཁོ་ཡི་ མི་དི་ཡམ་ད་ད་བོ ཨེ་བ་ཏིང་རི་ ཧ་བ་ཁུན་ཆེ ཨ་དུ་དུ་གི་ མི་ཡམ་ད་ད་བ་ནི་ན ཁོ་ཡི་ ཀ્લབ་ཁི་སུ ཕན་ཆེ ཡམ་ན་སུ ཨ་དུམ ནེམ་བ་ ཨེ་བ་ཀོ ཨ་དུ་དུ་གི་ མ་ཡམ་ཏོ་ནིང་ཨ་སུ ཏོ་བ་ངམ་དབ་དོ ཨ་དུ་མ་ཡན་ ལེ་ཡ་ ཏོ་ནིང་བ་བུ་དི་ མ་ཡམ་ ལེ་ཡ་ ཁོ་ཡི་ ལེ་ཀ་གི་ ཚ་ཁ་ཏ་ན་བ་ཧ ན་བ་ད
2: ལམ་དམ་སི་གི་ ཨ་ན་ ལ་ཡེང་ ཧི་རམ་ ཁུ་དིང་ད་ ཚ་ཁ་ཏ་ན་བ་ ཧ ན་བ་ད་ ཀ્લབ་ ན་ ལོ་རི་བ་ ཐོ་དང་ཨ་སི་ yamna singtha ningai oi ithai lokhong thakna ba ising lambi sorok na singba kaya da awat pa leiriba kaya amabu phagatna ba khona ba da tingri youth development association gi finance secretary hawaibam rajna phongdok pirak ba wafam taminashi
8: ai ki ping hawaibam raj sing ayo zuti tingri ba kung asi gi club on leisure ba tingri youth development association tyd hai ba club asi gi finance secretary in the pub zibani
7: ফাইনান্স সেক্রেটারি আম ওইন থৌপুই হাইদন সুতাক পিরে আকই লামদাম আসি ওইন সাকক থরাঙ্গি মাইকাই দা খুমাং চপছলিবা লামদাম আসি সু আদুমক চাকক না হনা বিরঙ্গনি হাইবগি থাজাবলাই যাই
8: হয় হয়
7: মারমাসি না আকই লামদাম আসি গিদং তা কারি কারামবা সাকক থরাঙ্গি থাবক সিং পাইকট পিগি হাইবগি ওয়াকলন দিলে বিরে
8: কই কি ওয়াকলন জে আহামদ কই এডুকেশন দা হানা কই প্রায়োরিটি জে থামজে এডুকেশন হারে গা কই না ফর্মালি ওইন সাংগাম বঙ্গাম জগা চো কই না এডুকেশন জি দা কই লিকাই জি ওইবা লাইক দম জরিবা সাজনাও সিং দা কই না লাইক দম দা তাকা ওরিবা লাইক ওই গরে এনি ফর্ম অফ রেফারেন্স when that when the guy was singing the club ku dang da when what was singing when she the fanga na ba when the reference were any issue was the when the fanga na ba when the masigi thak da when the makha thak ba da when the irrigation labor sing machine gi oi ba ko gi low singu ba gi ji heram chi da ju when the project low singu gi panta or pani na chi da ju when the ko gi low machine gi da ena kana pin na gi da mok da when the itai khong gi lam ching asi when the phaga na bi dang da ko gi kana ona jari have ji tham cha kham
7: yam noi je ko itai lo khong haina su pan bi re ko lam da masigi oi na ko itai lo
8: ཁོང་ཆེ་མ་སི་དེ་ཀ་རི་ཀ་རམ་ཕི་ཡོན་དལེ་བི་ལེ་ཧུ་ཅི་ཁོ་གི་ཐེལ་ཁོང་ཅེ་ཆང་མ་ཡི་དམ་ཨན་ལེ་རི་བ་སི་གི་ལེ་གི་ཨོ་ན་ལ་ཁ་དོ་བ་ཁོ་གི་ཀན་ཨོ་ཅི་ཀན་ཨོ་ཅེ་ཨོ་དེ་ཨ་ཅི་ཀོ་ཨིན་ན་ 피범 제 파바디 오이데 아 이텔레콤 시기 오이나 거의 하주 그주 오이나디 야나야나 보고 이 피범 더 많이 신절이 누가 디바멘기 오이나 마케데기 저 오이나 이텔레콤 시기 오이나디 해나 롱이 진

ताबिरी मिसिंग द खंगन जवामा आगाजवाणी इम्फाल की म्यूजिक सेक्शन की बीदगी बीहाई कानबगी म्यूजिक ऑडिशन लाखलीब जून की तांग निपानदगी हौजरगनी एडमिट कार्ड लौबीख्रब कैंडिडेट सिंगना इसा इसा की ऑडिशन नुमित सिंग आगाजवाणी इम्फाल की नोटिस बोर्ड की यिंगबीरनबा निंसिंग जरी खंगन जब लोई जरी

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लौबीरस रेडियो सेरियल खोंथांग कयानी तरेट सुब तांगकता कोक पंगमजिब मचू लीलासी यंद्रेम्बम रंधि कुमार की वारी मचादगी अईब मसामकना रेडियो लीला ओइना इथोपनी लीला पुथोपा अधिकारी मयुम कीचंद्र शर्मा पुथोपद तेंबांग अथोपम सुभाष चंद्र सिंह हौजिक लेजरे रेडियो सेरियल प्ले खोंथांग कयानी तरेट सुब तांगकता कोक पंगमजिब मचू।

0: ꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯕꯂꯥꯁꯨꯕ꯭ꯔꯃꯅꯤꯌꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯒꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒꯤꯠ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯑꯥꯒꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯘꯔꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 30:30 ꯇꯥꯔꯦ. ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯄꯨꯡꯖꯥꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ. ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯨꯟꯒꯤ 8, ꯏꯉꯥꯒꯤ 29 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ. ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ. ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ. ꯖꯦ ꯍꯤꯟꯗ.
1: विशेष श्रृंखला की 5वीं कड़ी, लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, परिकल्पना एवं निर्देशन
2: जिस देश के पास अपार बौद्धिक वैभव था, भरत मुनि ने अभिनय का जहां तत्व ज्ञान दिया, उसी देश में उपनिषदों ने संवाद का ये मंत्र दिया, सत्य बोलें, कटु न बोलें, दिल न दुखाएं।

0: वाणी अपनी सरल, सुबोध और दोष रहित भाषा के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ आंचलिक भाषाओं और बोलियों को भी सम्मान दिया जाता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से अनेक साहित्यकारों ने आम लोगों के मध्य बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को संस्कारित किया। सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इला चंद्र जोशी, हरिवंश राय बच्चन, पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, गिरिजा कुमार माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, कमलेश्वर, राजेंद्र सिंह बेदी, अली सरदार जाफरी, मेलविल डिमेलो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और प्रभाकर माचवे जैसे साहित्यकारों के योगदान को सदैव याद किया जाएगा।
0: आकाशवाणी में वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर रहे राजीव कुमार शुक्ल हिंदी के जाने माने कवि, नाट्यकर्मी और अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं का उन्हें गहरा ज्ञान है। हिंदी भाषा के मानकीकरण और भाषा चेतना के क्षेत्र में रेडियो प्रसारण के योगदान को रेखांकित करते हुए राजीव कुमार शुक्ल ने बताया,
2: चूंकि हम वाचिक हिंदी की या वाचिक भाषा की बात कर रहे हैं जो बोली और सुनी जाती है, तो उसके साथ ये भी हुआ कि चूंकि हमारे देश में भाषाओं की बहुत विविधता है, तो जहां उन सभी भाषाओं

0: में प्रचुर और गंभीर और समृद्ध साहित्य है और उनकी बड़ी लंबी परंपरा रही है, लेकिन साथ साथ इसलिए इन सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए इनमें प्रसारणों की पूरी व्यवस्था आकाशवाणी में लगातार बनी रही है और ये प्रसारण होते रहे, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से जो देश के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी हैं उन तक ये ऐसी हिंदी जो व्यवहार में थी, सहज थी, सुबोध थी और उन तक सीधे पहुंचती थी, उसको सुनना और सुनने की प्रक्रिया के साथ ही सीखना भी शुरू होता है, तो आप कह सकते हैं कि देश की भाषिक एकता के लिए भी और उसमें हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित कराने में भी आकाशवाणी ने अपनी भूमिका निभाई। और जहां तक भाषिक एकता की बात है तो आकाशवाणी का एक कार्यक्रम होता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन, जो 1956 से लगातार होता आ रहा है और जिसमें देश की सभी वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं उनके कवि होते हैं, अपनी अपनी मूल भाषा में कविता पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके बाद इसे आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है, सभी भारतीय भाषाओं की कविताएं और फिर उनका हिंदी अनुवाद, और अन्य केंद्र उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में अनुवादित करके भी प्रसारित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाषाओं में और भाषाओं के साथ साथ और आगे जाएं तो बोलियों में भी आकाशवाणी ने उनकी परंपरा को बनाए रखने और उनको विकसित करके आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुविख्यात कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा निर्देशक रहे। श्री वाजपेयी स्वयं स्वाधीनता दिवस समारोहों और गणतंत्र दिवस समारोहों का आंखों देखा हाल वर्षों तक सुनाते रहे हैं। वे बताते हैं,
2: जहाँ तक साहित्य की बात है तो हमने तो उस पहले एक कार्यक्रम जो चलाया था कविता समय नाम से, फिर उसको बदल के उसको और मतलब उसका दायरा बढ़ा दिया, सिर्फ कविता ना करके फिर वो कहानी तक सीमित हो गया, मतलब और साहित्य का सभी आने लगे, तो साहित्य समय उसका नाम है। तो उसमें तो आप आज की तारीख में आप नाम लीजिए किसी बड़े से बड़े साहित्यकार का, वो सारे के सारे लोग आए। और उसमें सुविधा ये थी कि हमने उसके लिए तो मेरठ से और कहाँ कहाँ से बिजनौर जहां जहां से, ताकि एक अवसर मिले आम लोगों को कि अपने मनचाहे साहित्यकार के साथ वो संवाद कर सके। वो उस सिलसिले में भी आप जितने भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, जितने मतलब सब वो लीजिए, फिर वो एक कार्यक्रम जब चला जब हमारे वो मंडलोई जी डायरेक्टर जनरल थे, वो शाम की चाय, तो वो तो बने ही इसीलिए था कि जो देश के दिग्गज लोग हैं वो आए उसमें, तो उसमें तो एक से बढ़ के एक वहां भी ऐसे लोग दिग्गज लोग आए हर तरह के, बल्कि स्टूडियो में करीब करीब 125 लोग तो आ ही जाते स्टूडियो वन में, इतना पूरा पूरा भर जाता था। पर जब वो हमने शाम की चाय की हरिप्रसाद चौरसिया जी का किया तो उसके लिए फिर हमें बाहर ऑडिटोरियम लेना पड़ा, तो ये सिलसिला भी चलता रहा। तो उस समय के तो बड़े से दिग्गज जो भी साहित्यकार संगीतकार, ये एक सिलसिला निरंतर चलता रहा।
3: साहित्य की एक प्रमुख विधा है नाटक। मूलतः नाटक दृश्य विधा में आता है। रेडियो नाटक लिखना बहुत ही कठिन काम है। इस कठिनाई का मुख्य कारण ये है कि ये विधा आंखों के बजाय कानों के लिए होती है। इसका मंच श्रोता की कल्पना होती है।
1: लंबे समय तक रेडियो नाटक सजीव होते रहे।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बंबई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी।
1: वो रहा इंक्वायरी ऑफिस।
2: बहुत सुंदर बैठे हैं। कौन मेरी ड्यूटी का पहला दिन है।
1: गुड मॉर्निंग सर।
3: क्या क्या कहा तुमने?
1: गुड मॉर्निंग सर।
3: गुड मॉर्निंग सर।
1: यस सर।
3: घड़ी है तुम्हारे पास?
1: घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों?
3: अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी।
1: हाँ घड़ी है ना।
3: क्या टाइम हुआ?
1: 12:30।
3: 12:30।
1: हाँ
3: गुड मॉर्निंग क्यों? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं?
1: यस सर। गुड आफ्टरनून सर।
3: थैंक यू। जाओ
1: सर। सर
3: अब क्या है?
1: सर मैं आया हूँ।
3: आप आए हैं ये तो मैं देख रहा हूँ। आपकी फोटो उतरवाऊँ?
1: नहीं सर वो बात ये सर। हाँ ये सर ये लीजिए। ये लीजिए सर। ये लीजिए।
3: ये क्या है?
1: ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट।
3: मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या जन्मपत्री?
1: अरे जन्मपत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नए आए हो।
1: यस सर।
3: आज पहली दफा?
1: सर।
3: और पहली दफा ही लेट? 2 घंटा से भी ज्यादा।
1: वो सब रास्ते में सर। रास्ते में?
3: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं। तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो।
1: हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ। लेकिन सर वो बात ये कि
3: जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो?
1: वो सर बात ये सर वो मैं ये कह रहा था।
3: अच्छा अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें।
1: इस पे?
3: देख
1: लो सर। हाँ हाँ बैठ गया सर।
3: हाँ अब ये पूछताछ का दफ्तर है।
1: यस सर पूछताछ का दफ्तर।
3: किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
1: यस सर।
3: समझ गए?
1: समझ गया सर।
3: और हर यात्री से बड़े प्यार से धीरे से और मुस्कुराकर बोलना है।
1: जी सर।
3: तो फिर शुरू हो जाओ।
1: हाँ सर।
3: क्या बोलो?
1: हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना।
3: अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना।
1: हाँ पूछो।
3: आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है?
1: अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ।
3: खा गए ना कच्चा?
1: जी।
3: टेंपर लूज कर दिया
1: तो?
3: अभी समझाया था बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे।
1: अच्छा सर मुस्कुरा कर। हमको मुझे पता नहीं था आप कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ।
3: दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूर ये क्या दांत दिखाओ?
1: अच्छा सर
3: वो बंद करो।
1: मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ।
3: अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया?
1: अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है मैं देख लूंगा।
3: कोई बात नहीं, पसीना पहुंचो।
1: जी सर।
3: अबे मेरा नहीं अपना पसीना पहुंचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ।
1: ठीक है साहब।
3: खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो।
1: यस सर।
3: दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना।
1: आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही।
4: रेडियो नाट्य विधा के सुविख्यात नाटककार दानिश इकबाल उन महान नाटककारों को याद करते हैं जिन्होंने इस विधा पर गहनता से काम किया।
5: अगर सिर्फ नाटकों की बात की जाए तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम मशहूर राइटर कृष्णचंद को इस मौके पे हमें याद करना चाहिए, मंटो को याद करना चाहिए, उनके साथी दोस्त उपेन्द्रनाथ अश्क को याद करना चाहिए, राजा मेहंदी अली खां जो उस जमाने में बच्चों के नाटक करते थे, बच्चों के कार्यक्रम करते थे, उनको याद करना चाहिए, खुर्शीद अनवर जो कि सरदार भगत सिंह के साथी थे, फैज़ अहमद फैज़ के साथी थे और ICS में जिन्होंने टॉप किया था लेकिन बाप ने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं करोगे, कुछ आर्टिस्टिक काम करो, तो वो म्यूज़िक कंपोज़र थे हमारे, रोशन जो ऋतिक रोशन के दादा होते हैं वो उस जमाने में रेडियो नाटकों में संगीत दिया करते थे। बाद के दौर की अगर हम बात करें तो जगदीश चंद माथुर थे जिनका मशहूर नाटक है पहला राजा, जो हमारे डायरेक्टर जनरल भी थे, FC माथुर साहब थे जिन्हें नाटकों में बहुत दिलचस्पी थी, अनवर खान साहब थे, दीनानाथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेडियो का, जो एक ख़ास स्टाइल है जो बाद में हवा महल के माध्यम से उसके ज़रिए बहुत पॉपुलर हुआ, तो वो उसके रचयिता कहे जा सकते हैं। और मुझे याद है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के उस समय के जो डायरेक्टर थे रामगोपाल बजाज, वो जब भी हम लोगों की रिकॉर्डिंग में आते थे तो हम लोगों को ज़बरदस्ती खींच खाच के बाहर ले जाते थे। उस ज़माने में रिज़र्व बैंक के साइड में एक फल वाले की दुकान होती थी, वहाँ पे वो हमें जूस पिलवाते थे। और जब हम कहते थे कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो कहते थे हम तुम्हें नहीं पिला रहे हैं। दीनानाथ, जब हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे तो दीनानाथ जी हमको बुलाते थे और कहते थे कि ये नाटक करो। और उस ज़माने में जो हमको पेमेंट मिलता था वो हमारे लिए कितना बड़ा सहारा था। तो तुम लोग हमारे जजमान हो, हम ये तुम्हें नहीं दीनानाथ को पिला रहे हैं। तो इसी तरह से सत्येन शरद साहब थे जो कि रेडियो नाटकों में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चरणजीत साहब थे जिनका ढोल कपोल एक मॉन्यूमेंटल सीरीज थी 1971 की जंग के दौरान, और जिनको उस जमाने में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और उसी ज़माने में विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक एक राइटर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया करते थे। और निर्मला अग्रवाल थी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो देखा जाए तो वही हमारी गाइड, फिलासफर और मेंटोर

0: उसी जमाने में मुद्रा राक्षस हुआ करते थे, जो बहुत अच्छे नाटककार थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी थे। लोग बताते हैं कि जिस जमाने में कृष्णचंद और मंटो ये लोग काम करते थे, उससे थोड़ा सा पहले खुर्शीद अनवर के ज़माने में, रोशन के ज़माने में, मधुबाला एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे रेडियो आया करती थी और बच्चों के नाटकों में शामिल होती थी। मदन मोहन लखनऊ में थे, लेकिन जब भी दिल्ली आते थे तो वो नाटकों में म्यूज़िक देने के लिए आ जाते थे। बल्कि तलत महमूद को भी कहते हैं कि अगर वो आ रहे होते थे, आसपास होते तो उन्हें बुला लेते थे। और अगर देखा जाए तो रेडियो नाटक की जो पहली किताब, सबसे पुरानी किताब हमको मिलती है, वो मंटो की है। और वो बुनियादी एतबार से वो AIR दिल्ली के ही नाटकों की है। उस ज़माने में मंटो का जो एक सीरीज़ उन्होंने की थी रेडियो नाटकों की, जिसमें स्टॉक कैरेक्टर्स थे किशोर और लाजवंती। तो ये हर नाटक आओ से शुरू होता था। आओ हलवा बनाएं, आओ रेडियो ठीक करें, आओ कार चलाना सीखें, आओ साइकिल की मरम्मत करें। तो ये छोटे छोटे नाटक होते थे और मंटो को हम आज जानते हैं बहुत बहुत रियलिस्टिक, बहुत बिटर और बहुत इंटेंस कहानियों के लिए। लेकिन उस ज़माने में मंटो बहुत यंग थे और वो अपनी हल्की फुल्की चीज़ों के लिए, यानी कि लाइट कॉमिक प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते थे। तो 1930 और 1945 के बीच में रेडियो नाटकों की वजह से दिल्ली, बम्बई उस ज़माने में हम कहते थे, कलकत्ता, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, ये सारे स्टेशंस बड़े बड़े राइटर्स इनसे जुड़ गए थे। और जितने उस ज़माने के म्यूजिशंस थे, उस ज़माने के जितने आर्टिस्ट थे, वो उन नाटकों में काम किया करते थे। तो ये मौका है उन सबको याद करने का, जिनकी वजह से न सिर्फ रेडियो बल्कि जो परफॉर्मेंस की इंडस्ट्री है, और बाद में यही लोग फिल्मों में गए, और इस वक्त स्टोरी टेलिंग का जो भी हमारे यहाँ प्रचलन पाया जाता है, जो भी उसकी एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो उस ज़माने के रेडियो से ही उसकी शुरुआत होती है। और बग़ैर रेडियो के आज जिस तरह का टेलीविज़न हो रहा है, जिस तरह का स्टेज हो रहा है, जिस तरह की फिल्में हो रही हैं, इसको शायद समझ पाना मुश्किल होगा।
1: अनेक रेडियो नाटकों का निर्देशन करने वाले सुदर्शन कुमार अपनी प्रसारण यात्रा को ध्यान में रखते हुए बताते हैं।
2: जुलाई 1969 में मैंने AIR ज्वाइन किया। विविध भारती में पोस्टिंग हुई, जहां FC माथुर, सत्येन शरद, गंगा प्रसाद माथुर और BS भटनागर जैसे प्रोड्यूसर थे, सीखने को मिला। फिर विविध भारती बॉम्बे चला गया, एक साल वहां रहे। वहां धारवेकर जी से मुलाकात हुई, जो कि मराठी में एक ख्यात नाम था। एक साल बाद दिल्ली आए, सेंट्रल ड्रामा यूनिट में पोस्टिंग हुई। यहाँ मुलाकात हुई चिरंजीत, VP दीक्षित भट्टो, दीनानाथ, मुद्रा राक्षस, ऑल ग्रेट नेम्स। चिरंजीत जी तो अपने आप में एक ही नेम थे, एक संस्था थे। ढोल के पोल से उनका जो नाम इतना पॉपुलर हुआ, ऑल इंडिया फेम हो गए। VP दीक्षित भट्टो लिटरेचर में एक नाम। चिरंजीत जी रिटायर हुए, रिटायरमेंट से पहले सत्येन शरद जी को दिल्ली से सेंट्रल ड्रामा यूनिट में लेकर आए, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 1983 में मैं प्रोड्यूसर बन गया। यहाँ ग्रो करते करते फिर सत्येन शरद रिटायर हो गए, उनके बाद निर्मला अग्रवाल आए। आते ही उन्होंने कहा बाकी स्टेशंस को भी हमने जो है अपने साथ जोड़ लिया, और उन्होंने भी बगैर स्क्रिप्ट पढ़े स्टेज शो करने शुरू कर दिए। इस परंपरा से ये हुआ कि कभी लखनऊ ने ऑर्गेनाइज किया, कभी इलाहाबाद ने ऑर्गेनाइज किया, कभी उदयपुर ने ऑर्गेनाइज किया। तो तीन चार टीमें बाहर के बुला के, एक अपने स्टेशन के बुला के उन्होंने प्रोग्राम करने शुरू हुए। वो इतने पॉपुलर हुए, और दिल्ली में तो बहुत ही पॉपुलर हुए, नाटकों को आगे बढ़ाने के लिए और पॉपुलर करने के लिए बहुत से लोगों का सहयोग रहा, जिनमें मुख्य नाम है चिरंजीत, दीनानाथ, SS ठाकुर, FC माथुर। पुराने आज याद करता हूँ तो बहुत से नाम याद आते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसे लोगों का सहयोग मिला और कुछ करने का मौका मिला, और पूर्ण सहयोग मिला, कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। आज की डेट में आई एम ए सेटिस्फाइड पर्सन, जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, यस, वो मेरे को मिली। थैंक यू वेरी मच।
3: बोलना अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोलना एक कला है। लोक परंपराओं और आस्थाओं के धनी भारतीय समाज के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करना अपने आप में दोधारी तलवार है।
1: रेडियो ने अपने आरंभिक दौर में जो भाषाई संस्कार दिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसे अब NABM कहते हैं, उसमें फैकल्टी रहे वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर अनिल कुमार राम।
4: आकाशवाणी के साथ कुछ परंपराएं जुड़ी हैं, जो प्रशिक्षण के दौरान जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आता है उनको अवगत किया जाता है। अगर वो स्टेशन पर काम कर चुके हैं तो उससे वो वाकिफ होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि आकाशवाणी की जो परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, जो आकाशवाणी के संस्कार हैं, उनके साथ उनका जुड़ाव बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे समय की पाबंदी, हमें समय के साथ एक एक मिनट और एक एक सेकंड के साथ हमें कार्यक्रमों का ध्यान रखना पड़ता है। हम आम बोलचाल की भाषा में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा हमारा श्रोताओं से जुड़ाव होता है, या तो प्रस्तुतकर्ता के रूप में जो अनाउंसर होते हैं, उद्घोषक होते हैं उनके रूप में, या हमारे कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें स्टॉक कैरेक्टर्स के रूप में भी श्रोताओं से हमारा जुड़ाव रहता है। जब ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट में, तो उसमें जो लेक्चर्स होते हैं उनके साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी कुछ विषय लेकर उनको OB रिकॉर्डिंग, स्थल रिकॉर्डिंग पे भेजा जाता है। वो वहाँ पर अपने प्रतिभाओं के अनुसार कार्यक्रम बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं, और ट्रेनिंग के आखिरी दिन उनको सुना जाता है और उनको इवैल्यूएट किया जाता है। न केवल ये करते हैं वो, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग भी सिखाई जाती है, उसके अलावा मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग होती है, इंटरपर्सनल रिलेशंस की ट्रेनिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग आदि आदि की ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी जाती है।
1: ये एक उक्ति है कि सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई है, बिना लय के प्रलय आ सकती है। संगीत के सुर लय ताल के अभाव में बेसुरे हो जाते हैं।
5: सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। भारत में आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में संगीत के संवर्धन संरक्षण का जो अद्भुत काम किया वो सराहनीय है।
1: शास्त्रीय संगीत की दो धाराएं हैं, उत्तर भारतीय शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत। सुगम संगीत में गीत, भजन, गजल, कव्वाली शामिल है।
5: पंडित के वागीश कर्नाटक संगीत के सुविख्यात कलाकार हैं। संगीत के विषय में के वागीश जी बताते हैं।
6: मैंने म्यूजिक विभाग ज्यादातर देखा। मुझे आकाशवाणी तिरुचनापल्ली में स्टेशन डायरेक्टर के पद पे काम करने का मौका मिला, तभी मुझे पता लगा आकाशवाणी के साथ लिसनर्स का कितनी लगाव है, कितनी प्यार है। मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला, उनकी राय हमारा प्रोग्राम्स को कैसे इम्प्रूव करना है, नेशनल लेवल पे हो, स्टेशन लेवल पे हो, कैसे इम्प्रूव करना है, ये बहुत अच्छा सुझाव हमको मिलता था। विच आई कैन नेवर फॉरगेट। आकाशवाणी के साथ बहुत बड़े बड़े कलाकारों, प्रतिष्ठित कलाकारों का जुड़ाव था, उनका संपर्क था, जैसे रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हाफिज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बालसुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्यावंदनम श्रीनिवास राव, टी के गोविंद राव, येमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे, और इससे आकाशवाणी का इमेज इतनी ऊंचा रहा है। दे हैव ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट फॉर ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी शास्त्रीय संगीत परंपरा को कायम रखने के लिए, शास्त्रीय संगीत के प्रसारण के लिए, प्रोपोगेशन ऑफ म्यूजिक, प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूजिक, हमारा आर्टिस्ट ने बहुत बहुत अच्छे कलाकारों का रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है, ये भी एक बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। 60s की रिकॉर्डिंग्स हमारा आर्काइव में है और ये अभी सार्वजनिक को उपलब्ध करने के लिए CDs बना के भेजने का प्रक्रिया भी हमने किया है so that it should reach masses. People should enjoy music. लोग संगीत सुन के उसका आनंद लेना है जो आकाशवाणी का निधि जैसे हमने रखा है पुरानी पुरानी रिकॉर्डिंग पुरानी कलाकारों का बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग उसको रिफर्बिश करके और केस में बहुत अच्छा काम करके उसको प्रिजर्व किया है तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है
1: इन 90 वर्षों में भारतीय प्रसारण व्यवस्था आकाशवाणी ने एक कालजयी कार्य किया है इसे लोक संपदा नाम दिया गया
5: लोक संपदा भारत की विभिन्न आंचलिक समाजों की संस्कृति में विभिन्न बोलियों के वे संस्कार गीत हैं जो चंद वर्षों में लुप्त होने के कगार पर हैं वरिष्ठ लोक प्रसारक सोमदत्त शर्मा ने लोक संपदा संरक्षण का आरंभिक दौर का काम गहनता से किया वे बता रहे हैं
7: लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना आकाशवाणी की 98 वर्षों की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी इसका नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला था ये केवल लोकगीतों के संग्रहण की परियोजना भर नहीं थी ये भारत राष्ट्र के अंतरंग को समझने का उद्यम था उस एक सूत्र की खोज का प्रयास था जिसमें पूरा भारत बंधा हुआ दिखाई देता है ये जानने का प्रयास था कि हजारों जातियां, उपजातियां और जनजातियां अपनी लगभग 600 जवानों से कैसे एक भारत राग गाती हुई दिखाई देती है महापरियोजना का उद्देश्य भारत की लोकधर्मी चिंतन परंपराओं को खोजना जिनमें हमारे महान ऋषियों ने अपने अनुभवों और अनुसंधानों से खोज निकाला था इसी कारण प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष श्री के सूर्य प्रकाश जी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कहा था

0: एक ओर आकाशवाणी ने भारतीय लोक संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण का काम किया
1: तो दूसरी ओर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर काम करते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखा
0: ऐसी ही एक समृद्ध परंपरा शारदीय नवरात्र पर महिषासुर मर्दिनी कार्यक्रम की रही है

कार्यक्रम के अगले अंक में आकाशवाणी की 90 सालों की गौरवशाली यात्रा के ऐसे ही कुछ और ध्वजवाहकों की जानकारी दी जाएगी। तब तक ऐसी सभी विद्वान प्रतिभाओं को नमन जिन्होंने आकाशवाणी को जन-जन के दिलों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका

प्रसारण की प्रतिध्वनियां आज आप सुन रहे थे इस विशेष वृत्त रूपक श्रृंखला की पांचवी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नई युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
5: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadied

0: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक. इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सकें और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
2: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61%, लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता. लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से. 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी.
2: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए
1: जी,
2: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे, लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो जी जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग आल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र
1: फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच विमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज 3 करोड़ प्लस विमेन लेड SMEs are contributing to the country's progress and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
3: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit.

0: accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Samriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the JAM Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar, and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, Pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sonu.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन, उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गॉन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेई देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप BA MA PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए. और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके LPG कनेक्शन, फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो PM मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ड. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: for the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
2: yes.
1: aur jo aapne baat

0: थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ओडीएफ फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
0: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks, 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes, which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, due to the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Yeah. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन विमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है, मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है अगर उसको अच्छे

0: व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो, पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सुनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी अ बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स आल्सो, like they are coming up now. But with that, you also need latest skills because skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that because this is heart and hand, both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they're ready for the world. और ये सरकार चाहती है women led development कब होगा वो एक माध्यम तो यही है पहला स्वास्थ्य उसके बाद सुरक्षा उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन उसके बाद political empowerment क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है उनका साथ दिया है उनको सपोर्ट किया है उसके पीछे ये सारे तो हैं ही वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50% और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का और हमारा वोटर टर्नआउट जो है मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका एंड ये पाया गया कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी
2: बिल्कुल आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज I can say women administrators, women representatives, first timer maybe, administration mein to first timer sabhi hote hain, so it really doesn't matter. They learn and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done. To humne unse pucha kyun nahi ho sakta hai? Why are we here? To likhe kanun hi sirf chalenge ya nagarik suvidhaein badhengi? आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव यानी पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई उन तक पहुंचे और जो महिला प्रशासक हैं विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस दे हैव दिस इन देयर माइंड तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी
1: अदिति जी आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है जो एक दर्जा है समाज में वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है
0: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators, and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत मेरे मनमीत लेकर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ और गीत मेरे मनमीत में हम सुनते हैं सुपर हिट सॉन्ग्स और वो भी बिना रुके
1: इश्क जैसा ना कोई दूजा है इश्क तो एक हसीन पूजा है इश्क हर्फे दुई मिटाता है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अपना भारत दौरा पूरा कर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो गईं। सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल प्रमुख डॉ. राजेश गांवड़े, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार और अन्य गणमान्य व्यक्ति हवाई अड्डे पर विदाई देने के लिए उपस्थित रहे। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, last evening in New Delhi, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship, one that is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connectivity and shared cultural and religious traditions. He conveyed best wishes for the success of the government in Nepal. The External Affairs Minister said there are strong complementaries between the objectives outlined by the Nepal government and the initiatives that India has taken in the neighbourhood. He said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy development cooperation, education, disaster response and culture. Israel's Consul General in Mumbai, Yani Rivach, met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence in Mumbai yesterday. During the meeting, Chief Minister Fadnavis thanked Rivach for his recent announcement to install a grand statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Israel, made on the occasion of Shivaji Maharaj's coronation day. Describing the proposal as a historic initiative, Fadnavis assured the Israeli Consul General that the Maharashtra government would extend full support for the installation of the statue. The move is expected to further strengthen cultural and people-to-people ties between Maharashtra and Israel. As the southwest monsoon intensifies over Keralam, the India Meteorological Department has forecast heavy rainfall in the northern districts of the state until June the 9th. An orange alert is in place in seven districts today. Heavy rains and strong winds have caused damage in various parts of the state, with uprooted trees damaging houses. Due to adverse weather conditions and rough areas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam Lakshadweep and Karnataka coasts until Tuesday. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired seven ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that six missiles were intercepted, while a seventh failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम है आपका अपना पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है सुरतिया और इसे आपके लिए लिखा है वंदना अवस्थी दुबे ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

0: तुम लोग एसी कोच में कहां से घुसा है? चलो चलो यहां से।
1: क्या हुआ भाई टीटी साहब?
0: कुछ नहीं साहब, बताइए आपको कुछ चाहिए क्या?
1: अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो बताइए ये कि अलीगढ़ स्टेशन कब तक आएगा?
0: अलीगढ़ उससे बहुत टाइम है साहब, आप आराम कीजिए, मैं समय से पहले आपको बता दूंगा।
1: ठीक है साहब, ठीक है। वैसे अच्छा गा रहे थे वो लोग, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सच ही तो है, कोई यादें छोड़ जाता है तो किसी को यादें कभी नहीं छोड़।

0: भर साए की तरह साथ रहती हैं। समझ नहीं आया, क्या ये यादें सहारा होती हैं? ये यादें नश्तर बनकर कुरेदती हैं पुराने जख्मों को।
1: नमस्ते बाऊजी।
2: बाहर बरामदे में बैठे बाऊजी यानी रामस्वरूप शर्मा जी सुधीर के दोस्त आलोक के इस संबोधन और उसके पैर छूने के उपक्रम से गदगद हो गए।
0: ठीक है बेटा, ठीक है। अरे अब बुढ़ापे में और कैसा होना है, है? भगवान जितने दिन अभी और कटवाए यहाँ काटेंगे, है? अब बताओ भाई, अपनी इच्छा से कब कौन आया है और कब कौन गया है, है? शरीर है तो हारी बीमारी है, लाचारी है, अब क्या कीजिएगा भाई, सब झेलना पड़ता है, है?
2: किसी को अपनी और मुखातिब देख बाऊजी ने सारी बातें एक साथ कह लेनी चाहिए, लेकिन तब तक सुधीर अंदर से आ गया। बोलते हुए बाऊजी की ओर उसने जिन नजरों से देखा।
3: क्या बाऊजी, आप भी हर किसी को चढ़ने लगते हैं।
2: बाऊजी एकदम से चुप हो गए, जैसे किसी छोटे बच्चे को चुप करा दिया गया हो।
1: अच्छा बाऊजी, चलते हैं हम, फिर आऊंगा।
0: जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो।
2: फिर आऊंगा कह के जाने वाला आलोक आएगा तो, लेकिन सुधीर के पास उनके पैर छूने झुकेगा, हालचाल पूछेगा और फिर पूरा हाल सुने बिना ही सुधीर की ओर बढ़ जाएगा। अब कोई नई बात नहीं रह गई है, शुरू शुरू में उन्हें बहुत बुरा लगता था, अब उम्र भी तो 81 बरस की हो रही, दिमाग की मशीन आखिर क्या क्या और कितना याद रखे।
0: और क्यों क्यों याद रखा जाए उन कसैली यादों को जिनके दामन में सिर्फ कड़वाहट है। काश कोई ऐसी छलनी होती जिसमें कड़वी और कसैली यादों को और मीठी यादों को छानकर अलग अलग कर पाते, तो कितना अच्छा होता ना।
2: बाऊजी यानी शर्मा जी शहर के डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल उन्होंने इसी शहर में गुजार दिए हैं। गांव से कस्बा और कस्बे से शहर होते देखा है उन्होंने इसे। अभी बहुत बड़ा शहर नहीं हो पाया है, सो पैर छूने की परंपरा किसी हद तक बाकी है। छोटे बच्चे बड़े होने तक इसे निभाएंगे, इसमें संदेह है शर्मा जी को। कॉलेज के प्राचार्य की हैसियत आप समझ सकते हैं, कितना रुतबा होता है उसका। फिर यदि कोई ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्राचार्य हो तो कहना ही क्या, शर्मा जी ऐसे ही प्राचार्य थे। व्यवहार के मामले में शर्मा जी इतने अच्छे कि धीरे धीरे पूरा शहर ही उन्हें बाऊजी कहने लगा। विषय की इतनी जबरदस्त पकड़ कि उनके पढ़ाने के बाद दोबारा उस टॉपिक को समझाना तो दूर, भूलने की नौबत तक ना आती थी। मैं भी उनकी एक विद्यार्थी रही हूँ, सो उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानती हूँ। चकराइए नहीं, मैं यानी इस कथा की सूत्रधार, कहानी है ना, सुनाने वाला तो चाहिए, और चूंकि सूत्रधार हूँ तो मेरा दायित्व है कि इस कथा को आगे बढ़ाऊं, बस वैसे ही जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ रही है।
0: सब आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। अरे तुम मेरा शहर पीछे क्यों रह जाता, मेरा परिवार पीछे क्यों रह जाता, उनको भी तो जमाने के साथ कदम से कदम बढ़ाना है ना। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। वो मेरा पोता गुड्डू छोटा सा है, छोटा सा, अरे देखो कैसा तेज है, बड़ा स्मार्ट है।
2: गुड्डू को मोबाइल में व्यस्त देख बाऊजी ने पूछा।
0: अरे वाह गुड्डू पंडित, क्या खेल रहे हो?
4: खेल नहीं रहा बाऊजी, ये कोलाज बनाने का एक नया ऐप आया है, उसे ही डाउनलोड कर रहा हूँ। कोलाज समझते हैं ना आप?
2: बाऊजी कॉलेज के दिनों में बनाए गए अपने तमाम पेपर कोलाज में खो गए। ड्राइंग से संबंधित हर चीज उन्हें पसंद थी, कितनी ही पेंटिंग्स उन्होंने अपनी नई उम्र में बनाई थी, ऐसी अद्भुत पेंटिंग्स कि लोग हाथों हाथ ले जाते, यहाँ तक कि उस वक्त की एक भी पेंटिंग उनके पास नहीं।
0: हाँ बेटा जानता हूँ, कोलाज क्या होता है ये तो जानता हूँ, अब अगर ये मोबाइल वाला कुछ अलग है तो पता नहीं।
2: बाऊजी ने अपनी स्मृतियों में खोए हुए

0: ही जवाब दिया।
1: कूल आज, अरे वो भी मोबाइल से। जीते जागते रंगों का कोलाज और वो भी मोबाइल से। भला उसमें भी कोई जीवन झलकेगा है? कोलाज और रंगों के बीच जिंदगी कैसे जागती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा गुड्डू बेटा।

0: जिंदगी को हर पल अपने करीब से देखने वाले बाऊजी अपने जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे। बाऊजी का नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची में विश्वविद्यालय की दीवार पर अंकित है। पता नहीं कितने गरीब लड़कों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें सभी खरीद के दिलवाते रहे। पूरे घर पर ये रुआब कि बाऊजी हंस रहे हैं तो सब हंस रहे हैं, बाऊजी तनाव में है तो सब तनाव में। बाऊजी कह दे आज तो दावत होगी घर में तो बच्चे नाचने लगते। बड़ी मम्मा यानी बाऊजी की धर्म पत्नी उन्हें सब इसी संबोधन से बुलाते हैं। रसोई की ओर रुख करती, बाऊजी पूरा मेन्यू बनवाते। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं। अरे भाई न बताएं तो आप बाऊजी को जान पाएंगे नहीं ना।
1: बाऊजी। क्या बाऊजी, कब से आवाजें लगा रही हूँ आप सुनते ही नहीं। कितनी बार कहा है कान की मशीन लगाए रहा कीजिए, अगर नहीं लगानी थी तो खरीदवाई ही क्यों। 25,000 की मशीन पड़ी है बिस्तर पर और मैं गला फाड़ फाड़ के पागल हुई जा रही हूँ।
0: सरोज, बाऊजी की मंझली बहू झल्लाई हुई आवाज इतनी तेज थी कि अगर कोई बाहर के गेट पर होता तो भी सुन लेता।
2: हाँ बेटा, लगा लेता हूँ, जाके लगा लेता हूँ।
0: अतीत में विचरते बाऊजी भी इस आवाज से वर्तमान में लौट आए।
1: अरे बाऊजी, ये तो बता दीजिए कि रात में क्या खाएंगे। पनीर की सब्जी बन रही है, आप तो खाइए।

0: नहीं पाएंगे। खिचड़ी या दलिया बनवा दूं क्या?
1: हाँ बेटा, जो आराम से बन जाए बनवा दो।
0: लो फिर चल पड़ी।
1: वैसे एक आध रोटी पनीर के साथ तो मैं भी खा सकता हूँ।
0: अरे नहीं बाबूजी, इतनी मसालेदार सब्जी खाने की जरूरत नहीं है आपको। नुकसान कर जाए, पेट खराब हो जाए तो फिर एक नई मुसीबत। वैसे भी पनीर हैवी होता है, आपको गैस बनने लगेगी।
1: ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे करो, और क्या है।
2: नीरी आवाज में बाबूजी से जो कहा गया सो कह दिया, लेकिन मन ही मन वो शायद यही सोच रहे थे कि
1: जब तय कर ही लिया है तो पूछना क्या, बना दो कुछ भी, अब तो बस पेट भरने से मतलब है। इच्छा निच्छा कहाँ रह गई है हमारी। अरे कह देती कि ठीक है एक रोटी आप भी खा लीजिए पनीर के साथ। अरे भाई पेट का क्या है, वो तो कभी खिचड़ी से भी खराब हो सकता है। गैस तो मूंग की दाल खाने से भी बनने लगती है। अरे तो इस उम्र में काहे को इतनी पाबंदियां लगाना खाने पर है। मन से खाई जाने वाली कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, भाई मेरा तो ऐसा ही मानना है।
2: बाऊजी उठ के अंदर चले गए अपने कमरे में। कान की मशीन लगा ही लें तो ठीक है, कल सुधीर का 25,000 भी दे दें निकलवा के तो ठीक रहेगा। हालांकि गलत तो नहीं कहा सरोज ने, लेकिन तब भी कई बातें अच्छी नहीं लगती बाऊजी को। मशीन की कीमत की जगह उपयोगिता याद दिला देती ना। वैसे भी जब से मशीन का पैसा दिया सुधीर ने, कई बार याद दिला चुकी है सरोज। पहले तो उनका ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन बाद में लगा कि जब पहली मशीन उन्होंने खुद पैसा दे के खरीदी थी तब तो नहीं टोका सरोज ने कभी। कल कहेंगे सुधीर से ऑफिस से लौटते वक्त निकालता लाए। वैसे भी पैसे के मामले में बाऊजी कोताही नहीं करते। भगवान की दया से पेंशन के 35,000 रुपए मिल रहे हैं उन्हें। पूरे 15,000 निकलवा के रख देते हैं सरोज के हाथ पर।
0: अरे बाबूजी, इसकी भला क्या जरूरत थी।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, सरकार दे रही है पेंशन, तो मुझे करना क्या है इसका बेटा। वक्त जरूरत के लिए भी है मेरे पास। महंगाई बहुत है मैं जानता हूँ, रख लो, घर में काम आएंगे पैसे, रख लो।
2: सरोज और सुधीर दोनों का ही महीने के पहले हफ्ते में मूड बहुत अच्छा रहता है, तब तक जब तक बाऊजी ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद फिर रोज के ढर्रे पर ही उनका मूड भी चलने लगता है। लेकिन ये बुरा नहीं लगता बाऊजी को। टीवी ऑन करके बैठ गए बाऊजी, सीरियल वे देखते नहीं, न्यूज में एक ही न्यूज को इस कदर दिखाते हैं चैनल वाले कि बाऊजी उकता जाते हैं। सुबह का पढ़ा अखबार फिर से पढ़ने लगते हैं, जो कुछ छूट जाता है उसे खोज खोज के पढ़ते हैं। वैसे बहुत सी खबरें और खास तौर से संपादकीय पृष्ठ छूट ही जाते हैं सुबह। सुधीर एक ही पेपर लेता है ना, उसके दफ्तर में सारे अखबार आते हैं, सो कहता है काहे को दो दो पेपर लेना। एक पेपर आने से दिक्कत ये है कि बाऊजी को जल्दी से पढ़ के पेपर सुधीर को देना होता है। पहले वे आराम से पढ़ते रहते थे, तो एक दिन सुधीर ही झल्ला के बोला,
3: क्या बाऊजी सुबह से आप ही पकड़े हैं अखबार, जल्दी पढ़ लिया कीजिए ना, या फिर बाद में पढ़ा कीजिए, आखिर आपको करना ही क्या है दिन भर, चाहे जब पढ़िए बाद में।
2: अब अपने ही लड़के को कोई क्या याद दिलाए कि पेपर तो सुबह ही पढ़ने का असली आनंद है। खैर तब से जल्दी जल्दी हेडलाइंस पर निगाह डाल लेते हैं बाऊजी, लेकिन सुधीर के ड्राइंग रूम में आते ही पेपर उसकी ओर बढ़ा देते हैं। एक बार कहा भी बाऊजी ने,
1: अरे सुधीर बेटा मैं सोच रहा था कि अगर एक और पेपर मंगवाने लगते तो।
3: बाऊजी खबरें तो वही छपनी है दूसरे अखबार में भी, तो काहे को पैसा बर्बाद करता, आपके पास पूरा पूरा दिन खाली रहता है, आखिर करना क्या है आपको, पढ़े पढ़े अखबार ही पढ़ते रहिए।
2: उसके बाद कुछ नहीं बोले बाऊजी। मन तो था कहने का कि वो दे दिया करेंगे 150 रुपए अलग से दूसरे अखबार का, लेकिन फिर नहीं कहा, चुप लगा गए। पता नहीं क्या सोचे बेटा बहू। एक समय के बाद बच्चे भी कितने पराए लगने लगते हैं।
0: बाऊजी बाऊजी, खाना आपके कमरे में ही भिजवा दूं या यहाँ आ रहे हैं?
2: आवाज ऊंची करके पूछा सरोज ने, ताकि बाऊजी एक ही बार में सुन ले। जवाब देने से पहले उठ के डाइनिंग रूम की ओर चल दिए थे बाऊजी।
3: अरे यार वहीं दे दो ना, यहाँ कहाँ बैठेंगे, इतनी देर तक खाना खाते रहते हैं, वहीं दे आया करो उनके रूम में।
2: सुधीर की आवाज पड़ गई थी बाऊजी के कानों में। उन्हें लगा

0: में चल रहा था, जैसे रिटायरमेंट से पहले चलता था। बड़ी मम्मा बादाम छुआरे रात में भिगोती तो सबके नाम के चार चार बादाम और दो दो छुआरे भिगोती। बाऊजी का हिस्सा निकाल के बाकी सरोज को थमा देती। दूध में उबाल के बादाम छुआरा देती तब कहीं बाऊजी की दिनचर्या शुरू होती। बादाम छुआरे तो अब भी भीगते होंगे लेकिन बाऊजी को पता नहीं। उनके पेट और बढ़ती उम्र का हवाला देकर ये चीजें अब बंद कर दी गई हैं। ठीक ही किया होगा बच्चों ने।
1: बाऊजी, आपके फोन की घंटी बज रही है।
0: बाथरूम के बाहर से सरोज ने चिल्ला के बताया। झटपट हाथ धो के बाऊजी बाहर निकले। उनके फोन की घंटी अब कम ही बजती है सो उन्हें उत्सुकता थी। फोन कट गया था अब तक। उठा के देखा तो उनके पुराने साथी, सहकर्मी और घनिष्ठ मित्र राम बिहारी गौतम जी का फोन था। तुरंत फोन मिलाया बाऊजी ने।
2: हेलो, कहिए शर्मा जी, क्या हाल चाल है? कब आ रहे हैं अपने गांव?
3: गौतम जी, अरे बहुत अच्छा लगा भाई आपने फोन किया है। अब क्या बताएं, मन तो बहुत होता है आने का लेकिन अब उम्र और ऊपर से ये कान की समस्या, अब क्या बताऊं मैं। तबीयत की तरफ से भी डर लगता है भाई, तो अकेले हिम्मत ही नहीं पड़ती है, जबकि मन में तो वही रहता है। अब क्या कहें, अब रहते यहाँ हैं और मन जो है गांव में रहता है।
2: आप भी कहाँ लगे हैं तबीयत में। हाँ, तबीयत जब बिगड़नी होगी तब कहीं रहे बिगड़ेगी ही।
3: हाँ सो तो है।
2: और कान की भली कही, अरे कौन सा भाषण सुनने जा रहे हैं? टिकट कटवाओ, हाँ। बैठ जाओ ट्रेन में, हाँ? हम उतार लेंगे इधर। दोनों जने मिलजुल के रहे कुछ दिन तो लगे कि जिंदा हैं।
0: कितनी खरी बात कही गौतम ने, मिलजुल के रहे तो लगे जिंदा हैं।
4: बाऊजी, परसों सुनील और बहू आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, आप गुड्डू के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा ताकि उन दोनों को आपका कमरा मिल जाए। बाथरूम भी अटैच है ना माँ, तो वही कमरा ठीक रहेगा उनके लिए। और आप अपना जरूरी सामान यहीं रख लीजिएगा।
3: जरूरी सामान, शिफ्ट हो जाओ अब, मुझे मेरे ही कमरे से शिफ्ट कर दिया जाता है। कभी ये आ रहा है तो बाबूजी शिफ्ट हो जाओ, कभी वो आ रहा है तो बाबूजी शिफ्ट हो जाओ। अरे मुझसे ज्यादा तो ये इस सामान की अहमियत ज्यादा है जिसे जरूरी कहा जाता है। इनका बाप इनके लिए जरूरी नहीं रहा, ये सामान जरूरी है। सुन रही हो ना सुधीर की माँ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुम चली गई, बहुत अच्छा हुआ।
0: गुड्डू ने झटपट अपनी टेबल खाली कर दी थी। बाऊजी ने वहीं अपना सामान जमाया। दो तीन दिन खूब रौनक रही घर में। सुनील कोलकाता में है और उसकी बीवी बंगाली है। जाने के एक दिन पहले ड्राइंग रूम में दोनों भाई और उनकी पत्नियां बैठक जमाए थीं। वहां से आती आवाजों पर बाऊजी ने ध्यान लगाया तो समझ में आया कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है।
4: अब क्या बताऊं सुनील, तुम समझ नहीं पाओगे, बाऊजी हमेशा यहीं जमे रहते हैं दिन भर घर में, कहीं आना जाना तो होता नहीं इनका। अरे इनके कारण हमारी जो सोशल लाइफ है ना, बिल्कुल चौपट सी हो गई है। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो 100 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि ना जाएं, इनका क्या होगा।
1: अरे एक जमाना हो गया इनके साथ घर से निकले हुए, अब भला मैं क्या क्या बताऊं सुनील भैया। कहीं बाहर जाना हो तो पहले बाऊजी का खाना बनाओ। ओफो, मेरी तो कमर ही टूट जाती है दिन रात इनकी सेवा टहल करने में, और सेवा टहल का कोई जस नहीं है। हाँ
4: तो और क्या क्या बताएं यार, तुमको कितनी समस्या है, यू डोंट बिलीव इट। बाऊजी को तो तुम जानते हो, शुरू से छोटी छोटी बातों पर इन दिनों इतना तनाव पैदा हो जाता है कि घर का माहौल।
1: हाँ, और इसका असर अब गुड्डू पर भी पड़ने लगा है।
3: ये क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं तनाव पैदा कर देता हूं, मेरी सेवा टहल में इसकी कमर टूट जाती, मेरी बातों का असर गुड्डू पे पड़ता है, इनकी सोशल लाइफ खत्म हो रही, रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते। हे भगवान, ये क्या सुन रहा हूं, घूमने तो खूब जाते हैं

0: आठ आठ दिन को चले जाते हैं। खाना बनाने के लिए वो गायत्री आती है, वही बेचारी ख्याल रखती है, मेरी दवा दारू सब वही तो देखती है। हे प्रभु, यही सुनने और देखने के लिए जिंदा रखा है तूने मुझे। मेरे कारण ये सब एक बंधन में बंधे हैं। अब तो प्रभु तू ही मुझे इस जीवन के बंधन से मुक्त कर दे प्रभु, मुक्त कर दे।
1: नादान

0: ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही थी कि पाऊजी जैसे शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को भी ये दोनों पति पत्नी अपने पास नहीं रखना चाहते। इतना पैसा देते हैं बाऊजी, तब भी इन्हें परेशानी है। एक भी काम बाऊजी के मन का नहीं करते और बाऊजी फिर भी चुप रहते हैं। कोई बकर बकर करने वाला बुढ़ा होता तब आती इनकी अकल ठिकाने।
1: लेकिन भैया यू नो हम दोनों ही नौकरी करते हैं और फिर कोलकाता जैसा शहर, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, तबीयत बिगड़ जाए अचानक, तो कहाँ ले जाएंगे? हर अस्पताल 20 किलोमीटर दूर है और फिर यू नो शर्मिला को हिंदी बहुत समझ में भी नहीं आती, और ये समझ भी ले तो बाऊजी को इसकी हिंदी समझ में नहीं आएगी।
2: कमाल है यार सुनील, हम लोगों ने पट्टा नहीं पाया क्या इनके लिए? जीवन भर इनका बोझ हम ही लाते रहेंगे बस।
3: अरे शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब सुनील भैया आप बुरा ना मानिएगा, इनको गुस्सा ज्यादा आ जाता है, पर बात तो पते की कह रहे हैं। शर्मिला को हिंदी नहीं आती ये तो कोई बात नहीं हुई, शर्मिला नौकरी करती है तो हम यहाँ कौन सा खाली बैठे हैं। उसे तो तनख्वाह मिलती होगी, हम तो मुफ्त की चाकरी बजा रहे हैं। हाँ आखिर हमें भी थोड़ा सुकून चाहिए, हम भी तो पति पत्नी की तरह जी लें, उम्र पूरी बीती जा रही है। और सुनील भैया शर्मिला को भी तो बाऊजी की सेवा टहल का पुण्य मिल जाए।
4: इना चोल बे सुधीर दा, ए बाऊजी इका बोलता है, हम तो डेली माछेर झोल बनाता है। बाऊजी विल नॉट फील कंफर्टेबल एट ऑल, बोल देता है वो तो वेजिटेरियन है ना।
1: दैट इज द पॉइंट सुधीर,
4: कैसे करेगा?
1: हाँ बाऊजी को कैसे चलेगा ये सब, उन्होंने जिंदगी भर कभी अंडे को छुआ नहीं।
2: कमाल है कि अंडा नहीं
5: खाते। ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी औलाद, इनको मैंने बड़ा किया, ये मेरी उंगली पकड़ कर चलना सीखे, इनको अपने कंधों पर बिठाकर मैंने मेले दिखाए। और नहीं सुन सकते

0: आज उन्हें चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था और याद आ रही थी अंतिम समय में कही गई मम्मा की वो बातचीत।
1: सुधीर के बाऊ, ये लड़के तुम्हारे रहने का फैसला करे, खुद पर बोझ समझे, उसके पहले तुम्हें अपना फैसला लेना है।
2: सही कहा था तुमने, सही कहा था सुधीर की बात, सही कहा था।
0: सुबह जब सुधीर उठा तो बाऊजी तैयार होके ड्राइंग रूम में बैठे थे।
3: अरे कहाँ की तैयारी है बाऊजी इतने सवेरे से?
2: कुछ नहीं बेटा, वो गौतम जी बहुत दिनों से बुला रहे थे ना, तो अब क्या है कि हम दोनों एक ही अवस्था के लोग हैं, वो भी अकेले हैं, तो कुछ दिन अब उनके पास रहने का मन है तो हम जा रहे हैं।
3: अरे जा रहे हैं लेकिन टिकट?
2: टैक्सी करके जाऊंगा बेटा, ट्रेन वेन में यात्रा करने की इच्छा नहीं है।
1: अरे बाबूजी टैक्सी तो कम से कम 10,000
2: हैं। मेरे पास पैसे हैं बेटा। अरे बहू 10,000 क्या, मैं 20,000 दे सकता हूँ।
0: बाऊजी का खोया हुआ आत्मविश्वास चमक रहा था चेहरे पर।
4: अरे बाऊजी आप जा रहे? मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? देखिए देखिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि गुड्डू बेटा तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और ये तो नेशनल एग्जीबिशन है बाऊजी, और इसमें फोक पेंटिंग बनानी है, फोक पेंटिंग।
1: चुप कर गुड्डू, चुप।
4: मामा यू नो फोक पेंटिंग?
1: अरे गुड्डू, अरे बाऊजी कैसे बनवाएंगे पेंटिंग, उन्हें आती है क्या? मैंने करीम भाई से बात कर ली है, वे पेंटर है ना, सो बढ़िया पेंटिंग बनवा देंगे।
4: समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ना वो पेंटर वाली पेंटिंग नहीं चाहिए, उसमें ना नंबर नहीं मिलेंगे, कई लड़के बनवा रहे हैं उनसे, मुझे तो ना वो बाऊजी वाली ही पेंटिंग चाहिए। अरे मुझे फर्स्ट आना है भाई, और तुम्हें पता नहीं शायद बाऊजी

0: तो कोलाज भी बना लेते हैं।
1: अरे काहे का कोलाज बनाना है।
2: टैक्सी आ गई थी और बाऊजी पूरे ठसके के साथ उस पर सवार होकर हाथ हिलाते हुए चले गए। गुड्डू ने किसी प्रकार राम राम करते हुए एक महीना गुजारा। घर में और लोगों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन गुड्डू का मन बाऊजी के बिना नहीं लग रहा था। वैसे मम्मी को भी उसने कई बार पापा से कहते सुना था,
3: कमाल है सरोज यार, खाने में फिर वही लौकी, कल कद्दू, फिर लौकी, क्या
1: भूल जाओ पनीर और कोफ्ते। हाँ, इतनी तनख्वाह में लौकी और कद्दू ही मिलेंगे,
3: क्या तमाशा है ये।
1: जब से बाऊजी गए हैं हाथ बांध के खर्च करना पड़ रहा है। बाऊजी के 15,000 बहुत बड़ा सहारा था, अब समझ में आ रहा है घर कैसे चलता था। हाँ?
3: बात तो तुम ठीक ही कह रही हो,
0: लेकिन मम्मा अब इतनी चिंता क्यों कर रही हो। डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि बाऊजी जरूर आएंगे।
3: तुम्हें कैसे पता कि बाऊजी जरूर आएंगे?
0: बाऊजी ने मुझे बताया था।
4: गुड्डू बेटा, मैं जल्दी ही तुम्हारी पेंटिंग बनवाने आऊंगा, जरूर आऊंगा, चिंता मत करो बेटा, अभी तो टाइम है ना एग्जीबिशन में।
3: गुड्डू बेटा, क्या सचमुच बाऊजी ने तुमसे कहा था?
0: हाँ पापा, आपको क्या लगता है मैं क्या झूठ बोलूंगा?
2: गुड्डू ने सच ही कहा था और अगले दिन सुबह बाऊजी आ भी गए। बाऊजी के आते ही गुड्डू लिपट गया उनसे। सरोज को भी लगा जैसे घर भर गया हो फिर से। आते ही बाऊजी ने 1.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा प्लाई का टुकड़ा मंगवाया। दूध वाले से कहकर गोबर तो पहले ही रखवा लिया था, उसका घोल बनाया एक बाल्टी में और ब्रश से पूरी प्लाई पर एक कोट किया। सरोज कहती ही रह गई कि भाई पहले आराम कर लो, लेकिन बाऊजी अपने इस भूले बिसरे काम को करने में बेहद मगन थे। एक कोट करने के बाद ही वे अपने कमरे में गए, थोड़ा आराम किया और फिर काम में लग गए। अब दूसरा कोट किया गया, 1 घंटे बाद तीसरा कोट। अब प्लाई एकदम गोबर से लीपी गई, चिकनी जमीन जैसा दिखने लगा था। बाऊजी ने अपने सदे हुए हाथों से 50 बिंदु बनाए खड़िया मिट्टी के सफेद घोल से और फिर उन्हें मिलाने लगे। 2-2 बिंदु मिल रहे हैं, कलाकृति आकार ले रही है धीरे धीरे। अगले 1 ही घंटे में बाऊजी ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध सुरतिया को बोर्ड पर उतार कर रख दिया था। ये कलाकृति बुंदेलखंड के हर घर में बनाई जाती है दीपावली के समय। बगल में बैठा गुड्डू पूरे मनोयोग से देख रहा था बाऊजी को काम करते हुए, और जब पेंटिंग तैयार हुई तो हक्का बक्का सा देखता रह गया। झूम उठा गुड्डू। सुधीर और सरोज भी भौचक से खड़े थे, जैसे बाऊजी का एक नया ही अवतार देख रहे हों। अगले 3 दिन उत्सव से बीते। गुड्डू की पेंटिंग प्रथम आई थी और फिर इसे दिल्ली ले जाया गया, जहां इसे लोक कला भवन में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने किया और इस पेंटिंग की जी खोल के तारीफ की। गुड्डू ने भी झूठ नहीं बोला था और खुल के बताया भी कि ये पेंटिंग उसके 80 वर्षीय दादाजी ने बनाई है। अगले दिन राष्ट्रीय प्रादेशिक सभी अखबारों में बाऊजी की सुरतिया बाऊजी की तस्वीर के साथ चमक रही थी। सुधीर और सरोज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब पेंटिंग वापस आए और कब वे उसे अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लगाएं। और इधर शहर के तमाम ऐसे लोग जो कभी सुधीर के घर आने पर बाऊजी को प्रणाम तक करने में कतराते थे, आज बाऊजी को घेरे हुए हैं, हाथ जोड़े एक पेंटिंग उनके लिए भी बना देने की प्रार्थना कर रहे हैं। और बाऊजी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है, आंखों में जिंदा होने का एहसास है।
4: जिंदा होना और जिंदा होने का एहसास दोनों अलग अलग बातें हैं। रिटायरमेंट के बाद शायद मैं सिर्फ जिंदा था, लेकिन मेरे पोते गुड्डू ने मुझे एक वजह दी और अब मैं जिंदा होने के एहसास के साथ जिंदा हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी जिंदा दिली के साथ जीऊंगा।
0: रुक जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप?
4: कहीं नहीं जा रहा हूं बेटा, कहीं नहीं जा रहा हूं, बस जिंदगी को एक बार और नजर भर देख लेना चाहता हूं। तू चिंता मत कर बेटा, तू जब भी कहेगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। तेरे कोलाजों में जिंदगी का एक और नया

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी सुरतिया, जिसे आपके लिए लिखा था वंदना अवस्थी दुबे ने। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए हम बेताब हैं। तो आप चाहें तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो इसी के साथ कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, इसको यहीं समेटते हैं। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तानी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रवि साहब की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में सुना आपने ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और संगीत था शंकर जयकिशन का। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था देवानंद और आशा पारेख पर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने। प्राण ने फिल्म में खलनायक का किरदार निभाया था और राजेंद्र नाथ ने सहायक भूमिका निभाई थी। और अब पढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ, जो है फिल्म साथी से मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

1968 में आई फिल्म साथी से सुन रहे थे आप ये गीत। आवाज़ थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इस फिल्म को निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने और फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल ने। ये फिल्म 1961 की एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से गीता दत्त की आवाज़ में।

सुमधुर आवाज में सुना आपने ये गीत साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से, और ये फिल्म 1962 में बनी थी और ये एक ऐसी एक बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक फिल्म थी ये, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है भारतीय सिनेमा के इतिहास में। और इस फिल्म का निर्देशन किया था अबरार अलवी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। इस फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाया गया किरदार छोटी बहू भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली चरित्रों में से एक माना जाता है। ये फिल्म बिमल मित्र के उपन्यास साहिब बीवी और गुलाम पर आधारित थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत फिल्म श्री 420 से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 6 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहानी।

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में सुना आपने ये खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम था बेटी बेटे।

और संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म 1964 में आई थी और ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इस गीत को जो अभी हमने आपको सुनवाया, इस गीत को अमर बनाता है रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़। और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था सुनील दत्त और बी सरोजा देवी पर। ये गीत अपने दौर की उन गीतों में से एक है जो आज भी सुनने पर दिल सुकून से भर जाता है। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की

0: आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इजराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्धविराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इजराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic

तेरी आने का धोखा सा रहा है, तेरी आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। अजब है रात से आँखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था 6 दिनों का, वो कोई दोस्त था 6 दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 38 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, रात के दर्द को गीतों से, बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को भी, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं आशा जी की आवाज़ के साथ।

जब भी इस गीत को सुनो तो ऐसा लगता है वक्त ठहर गया हो, है ना? गजल पन्ने से उतर कर सामने बात कर रही हो, मन करता है बिखरे हुए शब्दों को बीन लिया जाए।

जब जिंदगी में कोई खास इंसान आता है तो अंधेरी रातें भी दियों की तरह जगमगा उठती है। रात के इस खामोश पहर में जब चारों तरफ अंधेरा है, मुझे लगता है इस गाने को सुनकर किसी की याद ने आपको अंदर से भीतर से रोशन जरूर किया होगा।

ऐसे दोस्तों, रात का सन्नाटा अपनी जगह है, लेकिन इस गाने ने माहौल में एक अलग ही खनक घोल दी है ना। वो कहते हैं ना कि सादगी में ही सबसे ज़्यादा कशिश होती है। आजकल का जो ये मॉडर्न टाइम है, उसमें भी माथे की ये एक छोटी सी बिंदिया सच में पूरे दिल का चैन चुराने के लिए काफ़ी होती है।

तुमको पा लेने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी, तुमको पा लेने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, पेशानी पर सूरज बांधा, आंगन भर में धूप बिछाई, दीवारों पर सब्जा डाला, फूल पत्तों से अपनी चौखट रंगवाई, मौसम आए मौसम बीते, सूरज निकला धूप खिली, फिर धूप चढ़ी फिर और चढ़ी, फिर शाम हुई और फिर गहरी काली रात हुई, तुमको पा लेने की धुन में

साधुश प्लवी पिकाहट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:43 और 50 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के जज्बात को, रात के सुरों को अपनी बातों से, गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, उस नब्ज़ को, उस दर्द को बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम को, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और सुनते हैं अगला गीत।

वैसे रात का ये समा सोने के लिए होता है, लेकिन जो दो लेकिन जो लोग दिल लगा बैठते हैं उनके लिए रातें तो बस यादों की महफिल बन जाती है। गाना कहता है कि प्यार करने की थोड़ी सी भूल कर ले। सच बताइए, इस वक्त जागते हुए क्या आप भी किसी की याद में ऐसी कोई हसीन भूल दोहरा रहे हैं? अगर दोहरा रहे हैं तो ये गीत और बातें आप ही के लिए हैं।

जज्बात से भरी महफिल रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप समाचार, मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र। मंजू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said, "They deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business." The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shakti Kant Das, also attended the meeting. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchand Singh attended.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय है प्रोग्राम हमराही का. आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में. शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की महबूबा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ.

दूरी चाहे कितनी भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार दिलों के बीच ही रहे, हर दूरी को मिटा देता है, यादों की खुशबू रात को भी महका सा देती है।

संसार का सबसे सुंदर उपहार दिल का समर्पण है। जब दिल किसी अपने को सौंप दिया जाए तो हर धड़कन उसी का नाम गुनगुनाने लगती है।

इंतजार में भी एक अलग ही मिठास होती है, किसी प्रिय के आने की आस जीवन को नई रोशनी और नई खुशी से भर सा देती है।

सच्चे प्रेम में चेहरा नहीं भावनाएं बोलती हैं, आंखों में छिपा अपनापन ही प्रेम का सबसे सुंदर आईना बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है हम राही।

चूड़ियों और कंगनों की खनक जैसे प्रेम की मधुर सरगम हो, जो हर पल प्यार की यादों को और भी करीब ले आती है।

प्यार के सफर में कभी-कभी ऐसे खूबसूरत मोड़ आते हैं जहां दिल बस यही कह उठता है ये कहां आ गए हम और छोड़ के जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्य

कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की संभावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश

0: आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Sharma and Shaktikant Das, also attended the meeting. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal last evening in New Delhi, Dr. Jaishankar said, India and Nepal share a very special relationship, one that is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connectivity and shared cultural and religious traditions. The National Testing Agency, NTA, has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post yesterday, the agency said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म जलदीप से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन।

और इस गीत के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफी और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म राजा से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है वो है अरुणिमा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस जी बर्मन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत. फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन.

कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक ले रही हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति, और कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द हाजिर होती हूँ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में कल श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा भी की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतूर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के जयदीप को 7-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सागर ने सेमीफाइनल में मंगोलिया के तोलुई मुखबंत को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी। मौसम विभाग ने आज केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से भजन के साथ।

प्रार्थना प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत है। जब मन में विश्वास और कर्म में निष्ठा हो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है।

जीवन में समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसलिए हर दिन को सीख, सेवा और अच्छे विचारों से भरना ही जीवन की सच्ची सफलता है।